0: सच गया था वो सच गेदर रखी हुआ थे आव सच गेदर याने के तमाई अमारुम वैली
1: लेलन लेलन दलुव विलस नितंब न लोला नितंब न लोला
2: इंदाल में इंदाल याना तेरी नवती लो इवनी